0: The songs that raised us. The stories that stayed with us. Your weekend throwback begins now. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटाएगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7 to 9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Non-stop music from the biggest movies. The Big Weekender.
4: All about the hits.
0: Big 106.2. The beat of Bollywood.

0: Craps, MSN Chats and Bollywood Bangers. It's your audio time machine. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं? 4-5 दिन में?
2: चार या
1: पांच?
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड, प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7-9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। रीवाइंड योर हार्ट, रीवाइंड योर वीकेंड। Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.

वही पुरानी नई कहानी, बचपन से जवानी। देखे थे पहले जवानी में सपने, देखोगी सपनों में अब तुम जवानी।

0: बोलो।
1: ये रास्ता जरा सा नया है तमन्ना, जरा देख लेना कि रुकना कहाँ है और चलना कहाँ है, कहाँ लड़खड़ाना समझना कहाँ।

खोने और पाने के बीच पल भर का फासला है। इनकार मत करो, आगे बढ़ो, थाम लो उसका हाथ, वरना तुम्हारा इनकार मेरा इंतजार बन जाएगा। मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, देखना चाहता हूं प्यार के इस मोड़ के आगे क्या है। आगे बढ़ो।

0: of Bollywood.
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Rewind your heart. Rewind your weekend. Let the 2000s take over. This is the Big Millennial Weekender. Only on Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: 1 + 1 = 3.
2: That's not right.
1: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
2: Really? And these 4 designs to choose from.
1: Yes, really. There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
2: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
3: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
4: 2 या 4? 4। कब तक वापस लड़ेगा?
3: यही 4-5 दिन में।
4: 4 या 5? 5।
5: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2, द बीट ऑफ बॉलीवुड।

0: Big. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: एस सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापची के एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जादेरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
3: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Alain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.

0: ऑफ बॉलीवुड।
1: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
2: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड।
1: अलराज कहाँ है? कहाँ है अलराज?
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर
3: अलराज है। शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में।
1: चलो चले अलराज।
0: The Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae.

0: Big Mix. Weekdays 1 to 5 p.m. Only on Big 106.2. Brought to you by insurancemarket.ae.
1: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
2: दो या चार?
1: चार।
2: कब तक वापस लौटेगा?
1: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
2: चार या
1: पांच? पांच।
3: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2 द बीट ऑफ बॉलीवुड। बिग Point 2, the beat of Bollywood.

0: 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: High speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name, to 054-309-1062. The big check-in to Germany, only on Big 106.2.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटाएगा?
2: यूं ही यहीं 4-5 दिन में।
3: चार या
2: पांच?
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। OTT पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, Saturday 7-9 PM and Sunday 10 AM to 12 PM, only on Big 106.2. The beat of Bollywood. Big 106.2. Big 106.2.

0: 93.2 The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा सज्जा देरा रसल खोर अलकूज गुसेस अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट्स मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर।
0: Millennials Unite! Your filmy flashback has officially begun. This is the Big Millennial Weekender, only on Big 106.2, the Beat of Bollywood.

0: Big 106.2. Big 106.2. The beat of Bollywood.
1: Looking for a way to kick off your business? We can place your brand in front of 2.5 million people. Email connect@funasianetwork.com and we will get in touch with you. The Fun Asia Network means business. Your business.
2: भाई वो कुछ 2-4 हजार रुपए की जरूरत थी अपने।
3: दो या चार?
2: चार।
3: कब तक वापस लौटेगा?
2: यूं ही यहीं? चार पांच दिन में?
3: चार या
2: पांच? पांच।
4: लाइफ में जितने ऑप्शन उतना कंफ्यूजन। ओटीटी पे क्या देखें, क्यों देखें, देखे भी या करें स्किप, मैं सब बताऊंगा। द बिग बिंज विद सिड। प्ले दबाओ, कंफ्यूजन हटाओ।
0: द बिग बिंज विद सिड, सैटरडे 7 to 9 PM एंड संडे 10 AM to 12 PM ओनली ऑन बिग 106.2। द बीट ऑफ बॉलीवुड, बिग 106.2।

0: ऑन नंबर 35 फ्रॉम भाई तेरा स्टार है, रिक्रिएटेड गाना, ओरिजिनल गाना गुलाम का है। Right here on Big 106.2, मैं हूँ मानसी विद द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, प्लेइंग यू द टॉप 40 बिगेस्ट बैंगर्स ऑफ द वीक। मूविंग ऑन टू गाना नंबर 34, स्टिल ट्रेंडिंग नंबर 1 ऑन सोशल्स एंड द शो इज स्टिल ट्रेंडिंग नंबर 1 एवरी सिंगल प्लेस दैट आई हैव सर्च्ड एंड रिसर्च्ड। मुसाफिर कैफे की मैं बात कर रही हूँ। नेटफ्लिक्स ने ऑफिशियली अनाउंस किया था 5th अगस्त को कि सीजन 2 आने वाला है। फैंस लाइक मी गॉट वेरी वेरी एक्साइटेड, बट अभी तक कोई ऑफिशियल रिलीज डेट आई नहीं है बिकॉज रिन्यूअल हैपेंड सो क्विकली आफ्टर द प्रीमियर। प्रोडक्शन अर्ली स्टेजेस में है, तो अगर हम रियलिस्टिक टाइमलाइन सेट करें तो सीजन 2 2027 के एंड में ही आएगा। सो दैट्स अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग वेट। द शो इज अडैप्टेड फ्रॉम दिव्या प्रकाश दुबे'स बेस्ट सेलिंग हिंदी नॉवल। द फर्स्ट सीजन लेफ्ट व्यूअर्स ऑन एन इंटेंसली इमोशनल क्लिफ हैंगर एंड बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं सीजन 2 के बारे में। क्या अल्टीमेट चॉइस होगी? क्या चंदर सुधा के साथ जाएगा या फिर प्रीति के साथ? द एपिसोड्स विल एक्सप्लोर वेदर सुधा चंदर कैन रिकनसाइल द पास्ट और इफ टाइमिंग विल टेयर देम अपार्ट। सो आई कांट वेट फॉर सीजन 2, बट आई लव द म्यूजिक एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर मोर म्यूजिक सीजन 2 में मुसाफिर कैफे से। फिलहाल इस हफ्ते ऑन नंबर 34 ऑनेस्टली मेरी थ्योरी अगर आप पूछो ना, प्रीति शुड फॉल आउट ऑफ लव, शी शुड नॉट बी विद चंदर। आई नो अ लॉट ऑफ यू वोंट अग्री, बट आई रियली फील के प्रीति इज बीइंग टेकन फॉर ग्रांटेड इन दिस शो। व्हाट इज योर थ्योरी? डू लेट मी नो। यू कैन गेट इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम 106.2 बिग एफएम इट इज। इसी के साथ ऑन नंबर 33 अ ब्यूटीफुल वन, सतिंदर सरताज एंड जैस्मिन सैंडलेस।
1: सानू सारियां विसर गईयां रावां वे केड़े पासे जाइए।
0: Coming up, playing you the top 40 biggest hits of the week. Stay right here, Mehu Mansi with the Big Bollywood Countdown.
2: This is the Big Bollywood Countdown.
3: All the music I love.
2: The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood.
4: 1 + 1 = 3.
5: That's not right.
4: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
5: Really? And these 4 designs to choose from?
4: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
5: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
6: This summer, drive home your dream SUV with Jetour's unbeatable offers. Enjoy VAT on us or 0% interest, a free service package and a 1 million kilometer warranty. With EMI starting from just 966 dirhams per month, your dream SUV is closer than you think. Visit Jetour showrooms across Abu Dhabi, Dubai, Ajman and Al Ain today. Jetour UAE, part of Elite Group Holding. Terms and conditions apply.
2: The Big Bollywood Countdown. The part of the big weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 34.

0: 106.2. The beat of Bollywood. All my favorite music.
1: Turn it up.
0: The 40 biggest Bollywood moments. 3 hours of the week's hits. This is the Big Bollywood Countdown. Big 106.2.
2: Playing in the top 40 biggest hits of the week with the Big Bollywood Countdown. Main hoon Mansi. Moving on to gana number 26 from Cocktail 2. Bahut hi romantic gana hai. Shahid Kapoor ka favorite gana hai. And when you watch the movie, I don't want to give you any spoilers. You'll understand why this is Shahid's favorite song from the album Cocktail 2. This week, we've got Arijit Singh ki awaaz.
3: Zamane mein kahi meri tarah kabhi.
2: साथ में सुनिधि चौहान, प्रीतम दा का म्यूजिक, अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल वन कॉकटेल टू से. इसी के साथ ऑन नंबर 25, ओ माय गॉड, आई कैन नॉट रेकमेंड यू दिस मूवी इनफ. नसीर साहब, ओ गॉड, ही इज अ लेजेंड एंड वी सो ब्लेस्ड, सो लकी दैट वी गेट टू सी हिम ऑन स्क्रीन डू व्हाट ही डज. व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मर. इम्तियाज अली की मैं वापस आऊंगा, कमाल मूवी है, बहुत ही अच्छी कहानी है. एंड ऑफ कोर्स द मूवी हैज अ रोमांटिक एंगल, बट इट आल्सो शोज द पेन ऑफ द पार्टिशन दैट हैपेंड इन 1947. सो इफ यू हैवंट सीन द मूवी, प्लीज वॉच एंड डू कैरी अ लॉट ऑफ टिश्यूज.

0: इसी के साथ ऑन नंबर 22 मैंने कहा ही था कि मिलेनियल्स की सैयारा है ये मूवी। आवारापन 2 हैज ऑफिशियली क्रॉस्ड द 200 करोड़ ग्रॉस माइलस्टोन वर्ल्ड वाइड, एस्टैब्लिशिंग इटसेल्फ एज इमरान हाशमीज बिगेस्ट सोलो हिट एंड द फिफ्थ हाईएस्ट ग्रॉसिंग हिंदी फिल्म ऑफ 2026। एंड इस हफ्ते आवारापन 2 से ऑन नंबर 22। मिलेनियल्स का रिश्ता ना बहुत पुराना है इमरान हाशमी से, ये जेंजी समझ ही नहीं पाएंगे। एंड एवरी टाइम ही कम्स ऑन स्क्रीन हमें वो दौर याद आ जाता है जब हम इमरान हाशमी के गाने मूवीज घर वालों से छुप छुप के देखा करते थे। फिलहाल दिस वीक फ्रॉम आवारापन 2 ऑन नंबर 22।
1: द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, बिग 106.2, The Beat of Bollywood.
2: 1 + 1 = 3.
3: That's not right.
2: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
3: Really? And these 4 designs to choose from?
2: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
3: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
4: High-speed autobahns, majestic Bavarian castles, the ultimate European adventure is calling your name. The big check-in is back, and it's bigger than ever. So pack your bags, because Big 106.2 is taking you to Germany. This isn't just a holiday, it's a golden ticket to the heart of Europe. Ready to board? Just send us a WhatsApp. Big check-in, your name to 054-309-1062. The Big Check-In to Germany. Presenting sponsor, Daniel Properties. Title sponsor, Papa John's. Associate sponsors, Ford and Sharaf TG. Travel partner, AFC Holidays. Only on Big 106.2.
1: The Big Bollywood Countdown. Big 106.2. The Beat of Bollywood. Number 23.

वेदांग रैना की आवाज, इनफैक्ट जितने कमाल एक्टर हैं वेदांग उतने ही कमाल सिंगर भी हैं। इस हफ्ते ऑन नंबर 20, ऑन 19 वी हैव गॉट अनदर ब्यूटीफुल वन फ्रॉम मुसाफिर कैफे।

0: प्रियान श्रीवास्तव की आवाज दिस वीक ऑन नंबर 19.
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन.
2: ऑल द म्यूजिक आई लव.
1: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड. बिग 106.2. द बीट ऑफ बॉलीवुड.
3: अरे ओ सांभा, तू हमेशा इतना चिल कैसे रहता है रे?
4: सरकार, मैंने कार में अलराज से एसी स्पेयर पार्ट्स लगवाए हैं जिससे मेरी ड्राइव टू वर्क रहती है एकदम रिलैक्स्ड.
3: अलराज कहाँ है अलराज?
4: मिडल ईस्ट का नंबर 1 ऑटो एसी स्पेयर पार्ट्स डीलर अलराज है शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अल कूज, अल गिसेस, अजमान और अलेन में.
3: चलो चले अलराज.
1: Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 20.

On number 17, Guru Randhawa ki awaaz mein from Dhamal 4, playing you the top 40 biggest hits of the week. ये है बिग बॉलीवुड काउंटडाउन, मैं हूं मैंसी। मूविंग ऑन टू गाना नंबर 16, आयुष्मान खुराना की पति पत्नी और वो दोस्त से। आयुष्मान खुराना हैज अ वेरी बिग रिलीज इन 2026, रिलीजिंग इन नवंबर ये प्रेम मूलिया, हाईली एंटिसिपेटेड रोमांटिक ड्रामा डायरेक्टेड बाय सूरज बरजातिया, द मैन हु गेव अस विवाह, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं। द फिल्म फीचर्स आयुष्मान स्टेपिंग इनटू द शूज ऑफ बरजातियाज आइकॉनिक कैरेक्टर प्रेम, साथ में को स्टार है शर्वरी वाघ। सो कांट वेट आयुष्मान टू प्ले प्रेम। फिलहाल काफी प्रेम मिला है उन्हें पति पत्नी और वो दो के लिए इस हफ्ते। On number 16.

0: इसी के साथ मूवी जिसने बॉक्स ऑफिस पे पहले ही दिन तबाही मचा दी, द मोस्ट सेंसेशनल ओपनिंग एवर फ्रॉम टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोनअप्स। इस हफ्ते ऑन नंबर 5, द मूवी मार्क्स द हाईली एंटिसिपेटेड रिटर्न ऑफ द कन्नड़ सुपरस्टार यश आफ्टर 4 years, एंड गीतू मोहनदास ने मूवी बनाई है, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव इंडियन फिल्म्स एवर प्रोड्यूस्ड, बट आई थिंक द मूवी इज शैटरिंग ऑल द रिकॉर्ड्स एंड विल कंटिन्यू टू डू सो।
1: दिस इज द बिग बॉलीवुड काउंटडाउन,
2: ऑल द म्यूजिक आई लव,
1: द पार्ट ऑफ द बिग वीकेंड, Big 106.2, the beat of Bollywood.
3: 1 + 1 = 3.
4: That's not right.
3: It is with Skechers. When you buy 2 pairs of kids' shoes for 399 dirhams, you get a free school kit.
4: Really? And these 4 designs to choose from?
3: Yes, really! There's something for you too, Mom. You can buy any 2 shoes for 599 only.
4: Hurry to your nearest Skechers store. Offers are valid for a limited time only. T's and C's apply.
1: The Big Jill.
5: All my favorite music in one spot.
1: Weekdays, 9 p.m. to 12 a.m. on Big 106.2. Brought to you by InsuranceMarket.ae. The Big Bollywood Countdown. The part of the Big Weekend. Big 106.2. The beat of Bollywood. Number 6.

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बता दो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of

0: You're listening to The Big Binge with Sid on Big 106.2, The Beat of Bollywood.
1: ए सर्किट, अपने कार के एसी की वाट लग गई, एकदम रापचिक एसी कहाँ मिलेगा बताना।
2: टेंशन नहीं लेने का भाई, अलरास है ना।
1: अलरास बोले तो
2: मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर, शारजा, सज्जा, देरा, रसल खोर, अलकूज, गुसेस, अजमान और अलेन, हर ब्रांच में सबसे बेस्ट एसी स्पेयर पार्ट मिलते हैं।
1: इसी बात पे तुझे जादू की चप्पी। विजिट अलरास, मिडल ईस्ट का नंबर वन ऑटो एसी स्पेयर पार्ट डीलर।
0: Get school ready with Baby Shop. Discover backpacks, lunch boxes, water bottles, uniforms and more, featuring kids' favorites like Spider-Man, Disney Stitch, Barbie, Hello Kitty, Minecraft and K-pop. And here's the exciting part. Buy any school bag and unlock big rewards from Dunkin', Krispy Kreme, Dubai Dolphinarium, Orange Hub, Orange Wheels and Aster. Visit your nearest Baby Shop store or shop online at babyshopstores.com. Stop searching. Start watching. Sid's got your weekend entertainment sorted on The Big Binge. Big 106.2, The Beat of Bollywood.

एक्चुअली ये जो भाई बहन का डायनामिक है इस फिल्म में, इट्स द मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग थिंग्स अबाउट द एंटायर फिल्म. मैक्स वाइल्डली प्रोटेक्टिव है, हॉट हेडेड है, ही इज टेरिटोरियल. बेसिकली वो शर्ली के पर्सनल गोवा बाउंसर की तरह बिहेव करता है. लेकिन वॉट मेक्स इट वर्क इज दैट ऐश्वर्या doesn't play a very helpless little sister. पता है ना आपको सारे जो memes हैं of दुखियारी बहन in Bollywood, इससे पहले all that was very very true. लेकिन after Josh, you know, sisters also started getting a bit of Josh in Bollywood. Shirley has a mind of her own romance, and spends half the film trying to manage उसके भाई का यानी कि शाहरुख खान का temper. Casting itself is fun because शाहरुख खान ऐश्वर्या, they should have been playing lovers but they are playing brother sister. तो काफी courageous decision रहा होगा at that point. And that is why इस relationship को एक बहुत ही अलग सी energy भी मिलती है. It's loud, it's dramatic, slightly ridiculous as well. Very 2000s Bollywood doesn't age very well. लेकिन underneath all that gang rivalry, Max genuinely Shirley को protect करना चाहता है यार. So that's at number 4. Number 4 में Josh, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय. What's at number 3 coming up in just a while? The top 4 Bollywood भाई बहन जोड़ी is right here on the Big Binge with me, Sid.

This is the Big Binge with me, Sid, and we're doing the Bollywood ke top four, according to me, best bhai behen jodis on screen, real life, not a real life. We are at number three. At number three, according to me, there is this film. Dil Dhadakne Do is at number three. और मेरे लिए ना फॉर मी कबीर एंड आयशा प्लेड बाय रणवीर सिंह प्रियंका चोपड़ा ये बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट बिलीवेबल मॉडर्न ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप्स हैं यार कोई मेलोड्रामा नहीं है कि मैं तेरे लिए दुनिया से लड़ जाऊंगा एंड ऑल ऑफ दैट स्पीच एवरी 10 मिनट्स इंस्टेड एक जो भाई बहन के बीच में एक अनसेड सी एक होती है ना केमिस्ट्री मतलब दे डोंट से टू मच बट दे नो ईच अदर राइट इट्स ऑलमोस्ट लाइक सेइंग दैट कबीर सिंपली सीज आयशा वो अंडरस्टैंड करता है दैट शी इज मिजरेबल इन हर मैरिज हर रिलेशनशिप उसको पता है दैट द पेरेंट्स आर कॉन्स्टेंटली अंडर वैल्यूइंग हर और जब फैमिली फाइनली एक्सपेक्ट करती है कि वो सैक्रिफाइस करे ही इज द वन पर्सन कभी इज द वन पर्सन जो कंसिस्टेंटली अपनी बहन को बैक करता है एंड दैट्स वॉट एक्चुअली मेक्स दिस रिलेशनशिप फील सो रियल एंड जोया अख्तर ने कहा भी that she was not interested in developing relationships that are filmy but she wanted dynamics that felt recognizable so the lovely thing about Kabir is ki wo chota hai umar mein he is younger less accomplished less responsible lekin emotionally he is often the only person in the family jo ki apni behan ko ek adult ki tarah treat karta hai yaar so it's quite amazing that's at number 3 अगर दिल धड़कने तो नंबर थ्री पर है तो नंबर टू नंबर वन पे कौन सी फिल्में हैं कौन सी ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप्स हैं कमिंग राइट अप ऑन द बिग बिंज विद मी सिड

0: मैंने है ना फैसला किया है।
1: करेक्ट फैसला किया। तू कुछ नहीं कर सकता।
0: मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब मैं बताता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। मैं ना क्या कर सकता हूँ।
2: Less scrolling, more streaming. Let Sid take control of your weekend watch list. This is The Big Binge, only on Big 106.2. The Beat of Bollywood.

This is the Big Binge with me, Sid, right here on Big 106.2, the beat of Bollywood. And aaj hum log kar rahe hain the best, the top four bhai behen, brother sister relationships on screen, real life. Bhai behen jodiyan kaun si hain? Hum log number two par pahunch gaye hain. And number two pe hai ye wali film. Film ka naam Hare Rama Hare Krishna. Probably it gave Bollywood its definitive brother sister song. ऐसा कोई राखी का त्योहार ही नहीं है जहां पर बैकग्राउंड में ये गाना ना बज रहा हो. On the most iconic रक्षाबंधन बैकग्राउंड म्यूजिक इन इंडिया, बट इनसाइड द फिल्म एक्चुअली द स्टोरी इज क्वाइट हार्ट ब्रेकिंग. देवानंद प्लेज प्रशांत, क्रोसांत नहीं, प्रशांत. ही सर्चिंग फॉर हिज यंगर सिस्टर जसबीर, जो कि जैनिस बन गई है आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम हर फैमिली एंड फॉलिंग इन टू द हिप्पी कल्चर ऑफ काठमांडू. वेरी इंटरेस्टिंग प्रेमिस, राइट? सो दिस इज इंट सिंपली अ प्रोटेक्टिव ब्रदर स्टोरी. इट्स अबाउट अ ब्रदर जो कि डेस्परेटली अपनी बहन को खोज रहा है. इज वॉन्टिंग टू रिकवर द सिस्टर ही रिमेंबर्स वाइल slowly realizing कि यार वो तो कोई और बन चुकी है. She's become completely somebody different. And Zeena Tamman was absolutely extraordinary in it. And effectively, this film transformed Zeena Tamman's career and made her one of Hindi cinema's biggest stars. So, फूलों का तारों का सबका कहना है. बड़े sound sweet करता है at family functions. लेकिन in the movie, it carries an enormous amount of loss. It's almost like a reverse jigra. So, that's at number two. Coming up on the Big Binge, which is my favorite Bollywood brother-sister on-screen relationship. This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, the beat of Bollywood.

This is the Big Binge with me, Sid, on Big 106.2, the beat of Bollywood. It's now time to reveal my favorite Bollywood bhai behen ki jodi in belated celebration of Raksha Bandhan. And the award, the crown goes to Aditi and Amit in this film. Yeah, it's not a very usual choice. Janelia D'Souza and Prateek Babbar at their absolute best. Prateek Urf Amit is moody, introverted, hai, artistic, hai, permanently irritated, hai, or he spends most of the film actually behaving like he rather communicate with everyone through slam doors. Ye chuho se baat karne mein zyada interested hai as compared to insaan. Lekin underneath all of that teenage hostility, wo Aditi ko, apni behen ko, bahut achhi tarike se samajhta hai. And the best things about their relationship is, kyunki senti bana nahi hai yaar. Ye sentimental log ek dusre se बात नहीं करते, बहुत नॉर्मल बातें करते हैं. नॉर्मली भाई बहन लड़ते हैं, ये लड़ते हैं. नॉर्मली भाई बहन एक दूसरे को इरिटेट अनॉय करते हैं, ये भी करते हैं. दे बेली से व्हाट दे फील एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट. लेकिन जब अदिति इज एक्चुअली हर्टिंग, देन हु नोटिसेस? हर ब्रदर अमित नोटिसेस. प्रतीक बब्बर का बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, लेकिन ये जो भाई बहन की रिलेशनशिप है, इट एक्चुअली फील्स कंप्लीटली लिव्ड इन, वेरी नेचुरल, वेरी नॉर्मल, वेरी रियल. एंड फॉर मी दैट्स व्हाई इट विंस, बिकॉज जो असली रियल लाइफ भाई बहन होते हैं, वो कभी भी नहीं कहेंगे कि मैं हमेशा तुझे प्रोटेक्ट करूंगा. वो हमेशा कहेंगे मेरे रूम से बाहर निकल जाए. एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट. दैट्स माई नंबर वन. जाने तू या जाने ना, डू यू अग्री विद मी? यू डोंट हैव टू or not. You can leave a message on our Insta via 106.2 Big FM. Belated hi sahi, aap sabko Raksha Bandhan ki bahut bahut shubhkamnaye from all of us at Big 106.2. This is the Big Binge with me, Sid.

और इसके साथ इट्स टाइम फॉर मी टू से गुडबाय ऑन द बिग बिंज. आज का शो आपको कैसा लगा? यू कैन ऑलवेज लेट अस नो, लीव अ कमेंट ऑन आवर इंस्टा 106.2 बिग एफएम. वी डिड अ टॉप 4 ऑफ माय फेवरेट बॉलीवुड के भाई बहन जोड़ीज, व्हिच इज नॉट ऑफ स्क्रीन, नॉट साकिब सलीम हुमा कुरैशी, बट ऑन स्क्रीन रियल लाइफ, नॉट रियल लाइफ. टॉप 4 के बारे में बात की आज. सो बुकेज ब्रिक बैट्स मोर देन वेलकम. एक बार फिर हमारा इंस्टा हैंडल इज 106.2 बिग एफएम. आई एम सिड सेठ, SIDSETH, साइनिंग ऑफ फ्रॉम द शो एंड आई एम गोना सी यू ऑन अ मंडे मॉर्निंग. बैक टू स्कूल, बैक टू द बिग ब्रेकफास्ट 7 to 11. डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन. टिल देन एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड. बाय बाय.